समय होने वाला है 10 और ये वो वक्त होता है जब हम जानना चाहते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ी देर में होंगे समाचार, समाचारों के बाद फिर से होगी आपसे जरूर मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP

सरकार दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: academic qualifications, professional competencies, and long-term career prospects, equipping them with valuable skills for both military and civilian careers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at the minimum support price for 4 states. The ministry said that the procurement will be undertaken under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu will attend a program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. This day is observed annually to raise awareness about sickle cell disease. It highlights the struggles of patients and advocates for better research, funding and equitable treatment worldwide. After concluding her visit to Madhya Pradesh, President Murmu will arrive in Odisha this afternoon on a 2-day visit to her home state. In hockey, India defeated Uruguay 3-2, registering their third consecutive win in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक बताया और आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए उसकी कड़ी निंदा की। अमरीका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से और कनाडा ने कतर को 6-0 से मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वह समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वह फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
4: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक और मौजूदा समय के प्रतिकूल बताया। भारत ने कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और मित्रता पर

0: भारत सहयोग से होने वाले लाभ नहीं उठा सकता। परिषद के 62वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की सचिव अनुपमा सिंह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को बार बार उठाने के पाकिस्तान के प्रयासों की आलोचना की। सुश्री अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत के पक्ष से दुनिया भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत पर दावे करने के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर आरोपों और संदर्भों को खारिज करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और वो हमेशा रहेगा। सुश्री अनुपमा सिंह ने कहा कि एकमात्र अनसुलझा मुद्दा भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा और उनकी वापसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर में हो रही घटनाओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है, जहां हाल के हफ्तों में विरोध प्रदर्शन और अशांति हो गई है। पाकिस्तान में पिछले बुधवार को उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गुरुद्वारे में एक सेवादार दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना पेशावर से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मरदान के में हुई। पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने गुरुद्वारों के अंदर गोलीबारी की, जिसमें जगन्नाथ और उनकी पत्नी अस्मा वंती की मौत हो गई। इस हमले से पता चलता है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ कितना सक्रिय है। कट्टरपंथी हिंदुओं, सिखों तथा ईसाइयों पर हमला करते रहते हैं और जबरन धर्मांतरण कराते हैं, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों को अत्यधिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ लगभग 4 महीने तक चले संघर्ष के बाद हुए शांति समझौते के एक दिन बाद घोषणा की। इस कदम से ईरान के समुद्री और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाजों की आवाजाही सुगम होने की उम्मीद है। यूक्रेन ने रूस से एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। ये एक सप्ताह में ऐसा दूसरा हमला है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि शहर के दक्षिण पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित मॉस्को तेल शोधन संयंत्र पर कई ड्रोन ने हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने 555 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ाने रोक दी गई। संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाले नए नियम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल क्षेत्र में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया ये व्यापक कदम है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, न ही उन्हें पोस्ट करने, टिप्पणी करने, सामग्री साझा करने या सार्वजनिक समूह में शामिल होने जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। 15 से 16 वर्ष की आयु के उपयोगकर्ताओं को केवल सख्त सुरक्षा उपायों के तहत सीमित उपयोग की अनुमति होगी। फीफा विश्व कप में कल ग्रुप ए में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया ने 1-0 से पराजित कर दिया। ग्रुप बी में कनाडा ने कतर को एक तरफा मैच में 6-0 से हरा दिया। कनाडा के जोनाथन डेविड ने 3 गोल किए। इससे पहले कल अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप ए में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के लिए नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। हॉकी में भारत ने आज FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में

ये है दिल का मेल बॉक्स और सामने है आपके मैसेजेस, आपके नाम और आपकी चॉइसेस के साथ। ये चॉइस भी आप ही की है, फिल्म परिंदा 1989 में आई थी, बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है कई सारे लोगों का। तो फिर हमारा आज का दिन बड़ा ग्रेट रहा क्योंकि आपके मैसेज में हमें यही लिखा है इस गाने के साथ साथ, और फ्यूचर लाइफ भी शानदार बीतेगी आपके विषय। और ये रहा आपका गाना सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में।

और आपके नाम है माल्यान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और प्रोग्राम प्रसारक को नमस्कार करते हुए पसंद करते हैं हमारे शो को कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले नमस्कार करते हैं हमें, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता, राधा, नामदेव, रानी झाम, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी, गीतिका। तो क्या इतने सारे लोगों ने इसी एक गाने की फरमाइश की है? नहीं, लेकिन एक गाना बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है, इसकी गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। तो फिर ये है वारिस का गाना, 1988 में ये फिल्म आई थी और पसंद करने वालों के नाम हमने बता दिए हैं और बाकी नाम आपके थे जो कहते हैं कि कोई भी गाना दिल का मेल बॉक्स में हमारे लिए प्ले कर दीजिए, उनके नाम।

दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। गिरीश बाम, वैशाली, अजिंक्या, जीत, रिया, अतुल वडोदरा गुजरात से, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ज्योति मक्कर, मन्नत भारत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जलंधर पंजाब से आपका गाना है हमारे पास। बस एक छोटा सा ब्रेक, फिर से मिलते हैं दिल का मेल बॉक्स में।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आके मिल जा। आके मिल गया है आपका हमें मेल, जिसमें आपकी चॉइसेस हैं। कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मुसा भाई जान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप, कदमा जमशेदपुर से, चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन गौड़, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया, दर्शन भाई, और ये आपका गाना आशा भोसले की आवाज में दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे।

दिल का मेल बॉक्स है ये और आ गए हैं आपके मैसेजेस। हमें नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि देखिए जो गाना प्ले हुआ ना आके मिल जाओ, उसमें हम भी हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और कोई भी गीत में कहते हैं हमारा नाम शामिल कर लीजिए। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, गंज डंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, श्रोता रघुवीर, नगर से दिलावर, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बीकानेर से रानी झांब और बिट्टू झांब है और कहते हैं बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, ये सारे के सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त जिसका नाम है दिल का मेल बॉक्स। और बड़े सारे हमारे पास ऐसे भी मेल आए हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं क्या हम आपसे नाराज हैं, मतलब ही नहीं होता, कोई नाराजगी में इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाता है क्या।

बेचारा। जी हाँ, ये मैं अपने आप को कभी कभी महसूस करती हूँ जब आपके एक ही नाम के कम से कम 10 मैसेज एक साथ देखती हूँ। देखिए मोहम्मद सईद अब्बासी जी, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हम क्यों नाराज़ होंगे। आपके इतने सारे मेल हैं और इतनी मोहब्बत है, और कुछ मेल ऐसे होते हैं जो हमारे पास सिर्फ एक आते हैं और 10 आए हैं।

हमारे लिए उतनी ही वो क्वालिटी है, उतना ही मान है, उसका सम्मान है. और बहुत सारे मेल हैं, जैसे कि समीर परवीन है, जॉन दी कैस्ट्रो हैं, शिव कुमार हैं, अब्बासी साहब के बहुत सारे मेल हैं. तो कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि सबकी चॉइस, सबके गाने हम सब कुछ शामिल कर पाएँ दिल का मेल बॉक्स में और बता पाएँ कि हाँ आपसे हम हैं.

0: दिल का मेल बॉक्स आपको कैसा लगता है हमें बताइएगा जरूर। आप हमें मेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com पे, और अपनी चॉइसेस तो आप हमें भेजते ही हैं, लेकिन साथ में क्यों अच्छा लगता है कोई एक गाना, उसकी भी तो एक कहानी होगी, वो भी बताया कीजिए। अभी फिलहाल समय होने वाला है समाचारों का, उसके बाद फिर से होगी आपसे मुलाकात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ऑनरी हार के वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है।

0: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद,
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि हमारा लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दोस्तों कहते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी उन दो पहियों के समान होती है जिनके एक साथ मिलकर चलने से जीवन का सफर बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। अक्सर जिस परिवार में आदमी की आय कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, वहाँ अगर पत्नी के पास भी कमाई का कुछ साधन हो जाए
1: तो भला इसमें बुरा क्या है? इससे न सिर्फ घर में कमाई के चार पैसे आएंगे बल्कि पत्नी का आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और उसे महसूस होता है कि आखिर उसका भी कोई वजूद है।
0: और वैसे भी आजकल तो ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें महिलाओं को घर से बाहर जाने की कोई खास जरूरत ही नहीं है। बस आपके पास होना चाहिए आपका अपना मोबाइल, कुछ कर दिखाने का जुनून और आपके जान पहचान का सर्कल।
1: यकीन मानिए, फिर वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपका खुद का भी वजूद होगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी इस छोटी सी शुरुआत ने आपको अपने घर में और अपने जीवन साथी की नजरों में कितना ऊपर उठा दिया है।

0: अलग से जरूर होना चाहिए, जिसे हम अपनी रूटीन लाइफ के साथ भी कर सकें।
1: सोच कर देखिए कि जब आप इस तरह से अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ कुछ कमाने भी लगेंगे, तो आपकी वैल्यू आपकी जान पहचान में कितनी बढ़िया हो जाएगी। आपके जानने वाले आपसे खुश तो हो ही जाएंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास कितना बढ़िया हो जाएगा।
0: सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और घर के बाकी काम, सब कुछ संभालते हुए एक हाउसवाइफ का अपना खुद का वजूद कब और कहां कैसे खो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। तो क्या एक हाउसवाइफ की यही पहचान है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर उसका अपना भी एक वजूद है, उसे अपने वजूद को जगाना होगा। याद रहे, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

0: जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravazood.com पर।
3: उम्र चाहे जो भी हो, आजकल के हालात को देखते हुए ये जरूरी है कि हम सबके पास कमाई का कोई न कोई साधन

0: दिन बस नाश्ता लंच और डिनर सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.मेरावजूद.com पर।
2: लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, मगर ये नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी।
1: घर परिवार में जब खर्चों का बोझ बढ़ने लगता है और कमाई घटने लगती है, तब दिमाग में धीरे धीरे अवसाद बढ़ने लगता है।
2: और ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार में ऐसी समस्याओं का होना आम बात है। तो अब भला ऐसे में क्या करें? क्या यूं ही घुट घुट कर जीते रहें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं।
1: अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका मनोरंजन भी करेंगे और आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। हम आपको थक कर बैठने नहीं देंगे, आपको हौसला देंगे, आपके जज्बात की कदर करेंगे।
2: बस आप हमें सुनते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। यकीन मानिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करते हैं उन्हें और उनके वक्त को सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता।

0: मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355387 21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16 सेक्टर 41 नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन इसी समय 100.1 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार।

शुरू हो चुकी है तस्वीर और आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे बल्कि थेकड़े की तस्वीर पेरियार की शांत झील में, नीले अंबर का जहां होता है बसेरा, कुहासे की चादर ओढ़े जहां होता है हर सवेरा, हरी वादियों की गोद में बसा है एक बहुत ही प्यारी सी जगह जिसका नाम है थेकड़े, केरल का। और ये है तस्वीर थेकड़े की।

पता है, जब आप केरल के थेक्कडी में पहुंचेंगे ना, तो आपको लगेगा आपकी सारी आशाएं पूरी हो गई, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी मसालों की खुशबू, कल कल बहते झरने, और लगेगा कि भाई ये कोई दूसरी जगह है। घने जंगल हैं, थेक्कडी के हर कोने में बिखरा हुआ है कुदरत। बांस की नाव में बैठकर जब झील में आप जाएंगे और बहुत सारे प्यारे प्यारे नज़ारे देखेंगे, पहाड़ों की ढलान पे चाय के बगान भी नजर आएंगे आपको, तब आप यही कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रकृति के बीच में अपने आप को पा करके यही होगा।

और ये सारी की सारी चीजें प्यार का मौसम आपको मिलेगी केरल के थेक्कडी में। तो फिर आप जब यहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल सेंटर्स भी आपको ढूंढना पड़ेगा मिलेंगे, जहाँ पे जाके आप वहाँ का ट्रेडिशनल कथकली डांस देख सकते हैं, कलारीपट्टू जो वहाँ का मार्शल आर्ट है वो भी देख सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो देखिएगा।

जरूर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा आप जंगल ट्रैकिंग और बैम्बू राफ्टिंग भी कर सकते हैं। थेकड़ी पहुंचने के लिए अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं तो कोच्चि सबसे पास वाला हवाई अड्डा है, जो लगभग वहां से आपको 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। वहां से आप टैक्सी या बस से थेकड़ी पहुंच सकते हैं। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो कोट्टयम जाइए और वहां से लगभग 110-115 किलोमीटर की दूरी पर आपको थेकड़ी मिलेगा। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो मुन्नार से थेकड़ी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। ओफो, कितनी प्यारी ये पूरी जर्नी है। सड़क यात्रा जब आप करेंगे तो चाय के बागान से होकर गुजरेगी आपकी यात्रा, बहुत सुंदर। घूमने का सबसे अच्छा समय थेकड़ी के लिए है अक्टूबर से फरवरी, और सबसे सुहावना और अच्छा माना जाता है। उसके अलावा जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि घूमिए जब भी आपका मन करे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ जाए घूमने के लिए तो संग में हो लीजिए। वैसे कहते हैं कि भाई एक और दो, उसके बाद जो तीसरा होता है वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ हो जाती है। घूमिए जितना आपका मन करता है, क्योंकि घूमना हमारे विश्वास को बनाता है और हमारे नए विश्वास कई सारे ऐसी पुरानी चीज़ें जो होती हैं उनको तोड़ता है। घूमना हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो इस वक्त हम घूम रहे हैं थेकड़ी, जो है केरल में। यहाँ पर आप पेरियार राष्ट्रीय उद्यान देख सकते हैं, पेरियार झील देख सकते हैं। बहुत ही शांत झील है ये। यहाँ पे बोटिंग कीजिए आप, और जब आप देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आसपास हाथी भी दिखेंगे, दूसरे जानवर भी दिखेंगे, वो भी बड़े प्यार से वहाँ पे पानी पी रहे होंगे। मसाला और चाय बागान के बारे में तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई ही हैं। थेकड़ी के आसपास कुमिली के एक तरह का होता है, जिसका बहुत अच्छा सा वहाँ पे बगीचा है। तो आप इलायची, काली मिर्च, दालचीनी के महक से भरे खेतों की सैर कर सकते हैं। एडवेंचर अगर आपको शौकीन है इसके, तो फिर उसके लिए भी थेकड़ी हाजिर है। बैम्बू राफ्टिंग कीजिए, जंगल ट्रैकिंग कीजिए, जीप सफारी कीजिए, और उसके बाद हमें बताइए थेकड़ी आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत सुंदर लगा था, बहुत ही प्यारा है।

वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ भी जाओ वहाँ का जो शब्द है उसको, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता होगा, उसका क्या मतलब है। जैसे कि मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ कि केरल का थेकड़ी, जिसका कि मतलब होता है, ये नाम मलयाली भाषा के दो शब्दों से मिला करके बना है। थेक्कू मतलब सागौन यानी कि टिकवुड, आदि मतलब तल यानी कि निचला हिस्सा। कुल मिलाकर इसका शाब्दिक अर्थ है सागौन के पेड़ों की घाटी या फिर निचली भूमि, यहाँ पे पाए जाने वाले सागौन के घने जंगलों को भी दर्शाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम में ही बहुत कुछ छुपा होता है, और मुझे ये मेरा फेवरेट काम है, जहाँ जाओ उस नाम का शाब्दिक अर्थ है उसको देखो, और उसके बाद फिर तो हम जब चले तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और हर बार जब दूर जाते हैं तो फिर यूँ लगता है कि किसी से बहुत बहुत पास आ गए, और वो सारी की सारी उलझनें थोड़ा सा होल्ड ऑन हो जाती हैं, है ना। आपका सफ़र कैसा रहता है बताइएगा हमें ज़रूर। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे केरल के थेकड़ी की, और दीवाने हैं इस वक्त वहीं

वैसे मैं बताऊं आपको, थेकड़ी में ना कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर है, इतनी हरियाली है, प्रकृति के इतने पास है कि सिर्फ आप समय के साथ बहते रहेंगे, आपको वहीं अच्छा लगेगा। हरी वादियां हैं, शांत झील है, नीले अंबर का बसेरा है, और यहाँ पे क्या नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ मिला के यही लगेगा कि भाई पहाड़ की ढलानों पर वो जो चाय के बागान है ना, बस वहीं जा करके खूब सारी फोटोग्राफ्स लेते रहें और मौसम के साथ यूं ही बहते रहें। थेकड़ी तस्वीर में कैसी लगी बताइएगा जरूर। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

0: एंजॉय कीजिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत इंदु पांडे को फिर से मिलने के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस, अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्र

घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। शुक्रवार का दिन यानी खास प्रस्तुति एक कदम बुजुर्गों की ओर। कहते हैं धैर्य केवल इंतजार का नाम नहीं है बल्कि उस सफर पर विश्वास रखने का नाम है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। हमारे बुजुर्ग इसी विश्वास की जीती जागती मिसाल हैं। उन्होंने समय के उतार चढ़ाव देखे, चुनौतियों का सामना किया और हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रखा। उनके अनुभव हमारे लिए प्रेरणा है, उनकी कहानियां हमारी धरोहर है। तो उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हुए बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर। अगले कुछ पलों तक हम साथ चलेंगे जानकारी और मनोरंजन की खूबसूरत यात्रा पर।

गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी की। वे गीतकार होने के साथ साथ एक जाने माने लेखक और कवि भी थे। वे जिस तरह से गीत लिखते थे, सुनने वाले के जज्बातों को एक नया मोड़ दे जाते थे। और न जाने कितनी बार हमने उनके गीतों को गुनगुनाया है और आज भी हम उनके गीतों को गुनगुनाते हैं। अपने गीतों के बोल वे बेहद सरलता से लिखते थे, जिसे हर शख्स आसानी से समझ लेता था और महसूस कर पाता था। तो चलिए आज हम बात करेंगे कलाकार बेमिसाल के जरिए इसी खास गीतकार की, जिनका नाम है राजेंद्र कृष्ण। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ रुचिका आपके साथ।

जी हाँ, ये सदाबहार गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण जी। और आपको बता दें कि कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम बात कर रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी की। वे गीतकार होने के साथ साथ एक जाने माने लेखक और कवि भी थे। उनका पूरा नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था। 6 जून 1919 को वे पैदा हुए थे और लिखने का शौक उन्हें बचपन से ही था। कविताएं, शायरी, गजलें वे लिखने लगे थे। 1942 में शिमला की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी करने लगे, साथ साथ अखबारों को कविताएं प्रकाशन के लिए भी भेजने लगे। धीरे धीरे भीतर का कवि उनका आकार लेने लगा और मंचों पर भी कविताएं पढ़ने के लिए जाने लगे और वाहवाही भी मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वे इन सबसे संतुष्ट नहीं थे। बात 1945-46 की है और उन दिनों शिमला में बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था, जिसमें देश भर के लगभग सभी बड़े शायर इकट्ठा होते थे। वहां राजेंद्र साहब ने भी अपनी पहली गजल पढ़ी और उस पर खूब वाहवाही बटोरी। जब राजेंद्र साहब गजल पढ़ चुके तो उसके बाद जिगर मुरादाबादी मंच पर पहुंचे और जिगर साहब ने नौजवान शायर से फिर से शेर सुनाने को कहा और राजेंद्र कृष्ण दुग्गल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और लेखक राजेंद्र कृष्ण मुंबई पहुंच चुके थे। और इसी बीच 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1947 में उन्हें पहली फिल्म जनता की पटकथा लिखने का मौका भी मिला। उसी साल आई किशोर शर्मा निर्देशित फिल्म जंजीर के गीत भी उन्हें लिखने का मौका मिला था। और इसके बाद तो ऐसे मौके आते रहे जब देश राजेंद्र कृष्ण के गीतों में खूब लहराया और डूबा। और उसके 2 साल बाद यानी कि 1949 में आई फिल्म बड़ी बहन, जिसमें राजेंद्र कृष्ण का मशहूर गीत लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाज़ में गाया गया और इस गीत ने उस समय के युवाओं को दीवाना बना दिया था। तो चलिए आप तक पहुंचाते हैं फिल्म बड़ी बहन का वो सुपरहिट गीत जो आज भी हम गुनगुना ही लेते हैं। आवाज़ है लता मंगेशकर और प्रेमलता की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, ये गीत आपने सुना फिल्म सिकंदर आजम से, और इस गीत को लिखा था किसने भाई? इस गीत को लिखा था गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी ने, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, कलाकार बेमिसाल के जरिए। और वे एक गीतकार होने के साथ साथ एक जाने माने लेखक और कवि भी थे।

उन्होंने कई फिल्मों में जो है गीत लिखे और साथ साथ कई फिल्मों की उन्होंने कहानियां भी लिखी। और आपको बता दें, राजेंद्र कृष्ण जी का पूरा नाम जो था वो था राजेंद्र कृष्ण दुग्गल। 6 जून 1919 को वे पैदा हुए थे और बचपन से ही उन्हें कविताएं लिखने का शौक था, साथ साथ शायरी और गजलें भी वे लिखते थे। कई ऐसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं जिन फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे। इनमें बड़ी बहन, अलबेला, लड़की, अनारकली, नागिन, भाई भाई, देख कबीरा रोया, गेटवे ऑफ इंडिया, अदालत, बरखा, पतंगा, लव इन शिमला, नजराना, छाया, राखी, प्रेम पत्र, ब्लफ मास्टर, भरोसा, पूजा के फूल, और इनके अलावा जहानारा, मैं भी लड़की हूँ, खानदान, प्यार की ये जान, नई रोशनी, पड़ोसन, ब्रह्मचारी, सच्चाई, प्यार का सपना, एक श्रीमान एक श्रीमती, तुमसे अच्छा कौन है, रेशमा और शेरा, मन मंदिर, शहजादा मालिक, बॉम्बे टू गोवा, ब्लैकमेल, न जाने कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों के लिए इन्होंने गीत लिखे और वे फिल्में सुपरहिट हुई। और आपको बता दें कि फिल्म खानदान जो 1965 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए, जब हम इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं तो सुनते हैं फिल्म खानदान से ये सुपरहिट गीत। आवाज है लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
6: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
7: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
6: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
7: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 19 तारीख दिन है शुक्रवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तुतन टाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री हेमंता स्वर्गिरी और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अमाल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री तुप्तन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: A paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
1: In Jharkhand, 8 people were killed in separate lightning incidents during the last 24 hours across the state. Several people sustained injuries. 3 deaths were reported from Hazaribagh district, while 1 person each died in Ramgarh, Palamu, Lohardaga, Godda and West Singhbhum districts. In FIFA World Cup, Mexico defeated South Korea 1-0 at the Guadalajara Stadium, Mexico, to become the first country to qualify for the knockout round of 32 today. Following a tactical scoreless first half, where clear chances were sparse, the decisive breakthrough arrived in the 50th minute. India's LNG tanker Disha has successfully arrived at the Hague port in Gujarat after crossing the strategically important Strait of Hormuz. It is carrying 62,370 metric tons of liquefied natural gas from Qatar's Ras Laffan terminal. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. IMD has also predicted thunderstorms accompanied by hailstorms at places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heat wave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbha till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful 5-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप

0: प्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे।

0: बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार 2रे और 3रे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178

0: 27980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे पहले गांधी स्मृति, तत्पश्चात गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद हिंदी भक्ति गीत। तो चलिए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति के अंतर्गत हरिजन विषय पर गांधी जी का विचार।

0: गांधी स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना। किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापू जी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ, तो वो तो हमारी शर्म के लिए है। रोहतक में और जिला में कहो तो वहाँ हरिजन तो हर जगह पे पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन कहते हैं तो वो मीठा ऐसा है। तो वहाँ तो जाट लोग पड़े हैं, शायद अहिंद लोग भी पड़े हैं, तो उसी जगह पे है। तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है, तो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम लेना है हम लेंगे। और पीछे वहां भी देखो हक की बात आ जाती, हक से नहीं, क्योंकि वो तो हरिजन है ना, तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, न दे तो प्यासे रहे। खाना चाहिए हम दे तो खाए और नहीं तो भूखा रहे। और दौड़ाया दे तो हम दे तो ठीक है, और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकबर मानता हूँ। तो अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हम हमको तो अभी गुलामी में रहना चाहिए कि हम मर जाएं, कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको कि जाते हैं कहाँ, रहते हैं कि नहीं, और इतना काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल, तब पीछे इसी बात पर रहना चाहते उसका काम बिगड़ जाता है, और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिजन को तो गुलामी ही करना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मदरसा में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा थोड़ा सा पढ़े पढ़े हैं, लेकिन पढ़ते हैं और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं। तो वो तो उनकी बात हुई, लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका क्या कहें। तो मैंने आपको ख्रिस्टियों को तो कहा, अब भी हरिजनों पर, अभी तो ऐसा हो गया ना, अच्छा अंग्रेजी सत्ता चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम सबको दंड दे सकते हैं। और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को हम दया देंगे, जज हमको क्या करने वाला था। ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है।

कि वो हरि जन ही उनके तमाम होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है उसमें आपको मैं हरिजनों की तो करोड़ों कथा बोली सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम न कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है कर्म पड़ा है कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं गुलाम जैसे मानते आए हैं उनको हमने बड़ी बड़ा अधर्म किया गलती की पाप किया उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है। प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं बहुत किया भी है लेकिन सब लोग नहीं किया है करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है तो जितने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना नहीं लिए है तो मुझको ये करोड़ कथा आपको सुनानी भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते हैं और अभी करें अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे हाँ वही ऐसे है नहीं तो हम अच्छे हो जाते लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए। तो हमको समझना चाहिए तो उन्हीं पर हमारे ऐसे जुलम नहीं करना चाहिए लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में उससे ज्यादा उसका सबब ये है क्योंकि हमारे जीवन में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी मानो ख्रिस्तियों को क्योंकि पहले से करो साफ तो पीछे हम नहीं तो पीछे हम जाके जाति स्थान बनाएंगे आहिर स्थान बनाएंगे और पीछे हर एक अपना बनाएगा हिंदुस्तान का कोई नहीं बनाएगा ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं। इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि हमारे हरिजन को तो अपनाना ही चाहिए वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है वो कोई पंचम जाति है नहीं पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है चार वर्ण है सही तो चार वर्ण का भी अर्थ ये तो है नहीं मेरी निगाह में एक ऊंचा और दूसरा नीचा लेकिन चार में सब जितने पेशे हो सकते हैं तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना दूसरा का है कि धर्म का रक्षा करना और तीसरा का काम है कि तिजारत करना तो अपना पेट भर अपना घर भरने के लिए नहीं करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं अपने लिए लेकिन करोड़ों पैदा करें और शुद्ध कोली हो और वो सब प्रजा के लिए है वो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहे तो शुद्ध है तो वो सेवा करें लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं साथ साथ बेच सकते हैं ऐसा कोई है नहीं कि जो शुद्ध है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है तो भी उसको तो सूर्य का ही मन सेवा का ही काम करना सब सेवा है जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है तो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है और जो चाकरी नौकरी करता है हमारा पानी भरता है झाड़ू निकालता है अनेक काम करता है वो सब सेवा ही सेवा है चारों सेवा है लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है उसको भूल गए उसका अनर्थ कर लिया पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की और उसको पीछे पंचम भाव पैदा किया तो वो तो सब हमारी गलती है हमारी दुष्टता कहो तो वो है हमारे हम धर्मों से हट गए इसलिए हमने किया। तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गांधी स्मृति के अंतर्गत हरिजन विषय पर गांधी जी का विचार। आइए अब आनंद लेते हैं गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद हिंदी भक्ति भजन।
1: माताओं, बहनों और सज्जनों, आज हम श्री राम जी के त्याग का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विनती है कि पहले आप सब मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण कर मन पवित्र कर लें।

माता सीता, फूल सी सुकुमारी, जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा,

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया और फिर एक दिन

गुलशन कुमार प्रस्तुत इन्हीं हिंदी भक्ति गीतों के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे हागे ताडा रुबु अनिया तागे तान्यो तिलिंग याजी और नपंग ओदी के आवाजों में चंद आधुनिक आपातानी नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत हागे ताड़ा रूबू अनिया तागे तानियों और साथी कलाकारों के आवाजों में चंद आधुनिक आपदानी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे हागे ताडा रुबु अनिया तागे तानियो तिलिंग याजी और नपंग ओदी के आवाजों में चंद आधुनिक आपातानी नगमे। इसके साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वीं सत्र की छात्रिका कुमारी सोनम सोमू से स्थानीय बोली के को संरक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है इस विषय पर एक वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का नमस्कार। श्रोताओं, मैं सोनम छुमु दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में 5वीं सत्र की छात्रा हूं और आज इस समय मैं आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हूं और कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत स्थानीय भाषा या बोली की संरक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है इस विषय पर अपना विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी। दोस्तों, आज हम उस आवाज की बात करेंगे जो हमारे अरुणाचल प्रदेश की ठंडी हवाओं में गूंजती है, जो हमारे तवांग और वेस्ट कमिंग की खूबसूरत संस्कृति को जिंदा रखती है। यह है हमारी प्यारी मोनपा बोली। मोनपा बोली सिर्फ बोलचाल का एक साधन नहीं है, ये हमारे हजारों सालों की बौद्ध विरासत, हमारे प्रार्थनाएं, हमारे लोकगीतों और अजीलमो जैसे नाटकों का सांस्कृतिक भंडार है। जब हम इस बोली को खोते हैं तो हम उस पूरे विचारों और ज्ञान के विश्व को खो देते हैं जो किसी और भाषा में पूरी तरह से बयान नहीं हो सकता। यह वो धागा है जो हमें हमारे बुजुर्गों से जोड़ता है और हमारे लोक कथाएं इसी धागे में पिरोई हुई है। वैश्विक दुनिया की इस तेज दौर में जब दूसरी बड़ी भाषाएं हमारे समाज पर हावी हो रही है, मोनपा बोली को सचमुच खतरा है। यह सिर्फ हमारी बोली नहीं बल्कि हमारी मोनपा के ज्ञान को दर्शाने वाले अनोखे शब्द भी धीरे धीरे खो रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए तुरंत कदम उठाना बहुत जरूरी है। हमारी बोली का संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि हमारा अपना मोनपा दृष्टिकोण दुनिया में जिंदा रहे। यह हमारे बौद्धिक स्वतंत्रता है। जब हम अपनी बोली में सोचते हैं तो हम आजाद तरीके

0: से विचार करते हैं। 3 से 5 अक्टूबर 2025 को मैंने भाषा संरक्षण सम्मेलन यानी कि मोनपा यूथ एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, जहां कई सारे शिक्षित व्यक्तियों ने हमारे मोनपा बोली, हमारे मोनपा के गीत, हमारे परंपराओं तथा इतिहास के बारे में बहुत विस्तृत और खूबसूरत तरीके से हमें इन विषयों से परिचित कराया। इसी सम्मेलन में हमें बताया गया था कि मोनपा का एक शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी प्रकाशित होने जा रहा है, जो मुझे लगता है कि हमारे आधुनिक युवाओं के लिए काफ़ी सहायक रहेंगे। और तब मुझे गर्व के साथ यह गहरा एहसास हुआ कि मोनपा बोली मेरी पहचान का सबसे मजबूत स्तंभ है, और मुझे यह सीख मिली कि अपनी बोली में हिचकिचाना नहीं, बल्कि इसे खुलकर अपनाना और अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम सभी मोनपा लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि हम घर पर, दोस्तों के बीच और समाज में गर्व से मोनपा बोली का उपयोग करेंगे। मोनपा बोली को बचाना मोनपा लोगों के लिए स्वाभिमान और शक्ति का प्रतीक है। जब तक हमारी बोली जिंदा है, हमारी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत रहेंगी। तो चलिए आज से ही मोनपा बोली को अपनी रोज की आदत बना लेते हैं। हमारी बोली हमारी शक्ति है, इसीलिए हम सभी मोनपा लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि हम घर पर, दोस्तों के बीच और समाज में गर्व से मोनपा बोली का उपयोग करेंगे और मोनपा बोली सीखने और ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रयास करें, जिससे हमारे ज्ञान का संचालन हो सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वीं सत्र की छात्रिका कुमारी सोनम समूह से स्थानीय बोली को संरक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पर एक वार्ता।
2: दादी, कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए पुष्पा द राइज फिल्म से जावेद अली के आवाज में। गीतकार राकीब आलम तथा संगीत दिया है देवी श्री प्रसाद ने।

अगला नगमा पेश है केके की आवाज में। ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत को लिखा है विशाल ददलानी ने और संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोता, नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए गदर 2 फिल्म से अरिजीत सिंह के आवाज में, बोल सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से शेखर रवजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की आवाजों में, बोल अन्विता दत्त के और संगीत विशाल शेखर का।

अगला नगमा पेश है अतीफ असलम की आवाज में। अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म के इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

भूल भुलैया 2 फिल्म से सुनिए अगला नगमा अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में। प्रीतम द्वारा संगीतित इस गीत के लेखक हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म का नगमा, बोल अभिजीत भट्टाचार्य के और संगीत अमित त्रिवेदी का। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नवगीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में। गीतकार रेशमी विराग और संगीत दिया है जैम 8 ने।

हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से सुनिए अगला नगमा। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शरीफ तोशी ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए जबरिया जोरी फिल्म से यासर देसाई और अल्तमाश फरीदी की आवाजों में, गीतकार रेशमी विराग और संगीत तनिष्क बख्शी का।

केसरी फिल्म से भी आप सुन रहे थे गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा अरिजीत सिंह और अजीज कौर के आवाजों में। बोल एवं संगीत दिया है तनिष्क बख्ची ने। इसके साथ ही फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो रहे हैं। चलिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत अनंत लाल और साथियों से शहनाई वादन। राग है बसंत भैरवी।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे बसंत भैरवी राग पर अनंत लाल और साथियों से शहनाई वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश में वर्ल्ड सिकल सेल डे प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अपने नेशनल टारगेट साल 2047 से बहुत पहले सिकल सेल बीमारी को खत्म कर देगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ले लद्दाख में इंटरनेशनल योग दिवस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए के इंसेंटिव बांटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मांग की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि देशभर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन अभियान ने सिर्फ 3 महीनों में लगभग 50 लाख डोज लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाले नीट UG री एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन चैनल लॉन्च किया है। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में FIH वुमेन्स नेशंस कप में उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और पूल ए में टॉप कर रहा। फीफा वर्ल्ड कप में मेक्सिको ने ग्वाडलहारा स्टेडियम में साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। मेक्सिको आज नॉकआउट राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश बन जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर, खनन प्रभावित गांवों के लिए विशाल एकीकृत ग्रामीण पाइपलाइन, जल आपूर्ति परियोजना, ब्रह्मा कुमारीज का मातृ शक्ति भवन और एक विशेष सर्किट हाउस शामिल है। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने बेतवेल स्थित आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी जीवन शैली प्रकृति तथा आध्यात्मिक मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसके बाद राष्ट्रपति ने खांडवा जिले के ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में पूजा अर्चना की। यात्रा के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे 22 जून को खूना राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहरे तथा हो जहरे के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तरकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत देशभर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यह पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। वे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं का भी अवलोकन करेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री राधाकृष्णन 21 जून को लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में युवा, सशस्त्र बलों के जवान और विभिन्न संगठनों के सदस्य योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के संदेश को बढ़ावा देने के लिए भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारी वाले लघु उद्यम है। डॉ. मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहले सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगा दिए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि अभियान में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौरे में गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल के एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी को
पूर्ण परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि

0: सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 69 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीच से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के पूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279807 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर ले। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मैक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली की आकाशवाणी मुख्यालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। Prime Minister Narendra Modi has concluded his successful 5-day historic visit to France and Slovakia. During his visit to France, the Prime Minister attended the G7 summit in Evian. He also participated in bilateral talks with United States President Donald Trump, German Chancellor Friedrich Merz, British Prime Minister Keir Starmer, and President of the United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others on the sidelines of the G7 summit. Earlier, Mr. Modi, along with French President Emmanuel Macron, jointly inaugurated the Bharat Innovates event in France, which brought together leading startups, innovators and venture capital funds from India, France and other countries. During his visit to Slovakia, Mr. Modi met with the President of the Slovak Republic, Peter Pellegrini, at the Presidential Palace in Bratislava. In a special ceremony, the Slovak president also conferred upon Prime Minister Narendra Modi Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class. Prime Minister Narendra Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. The scheme has been designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, first-time employees are eligible for an incentive of up to 15,000 rupees, gaining crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 rupees per month per additional employee. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today. Governor Mangubhai Patel and Chief Minister Mohan Yadav were also present on the occasion. The President noted that one of the key goals set at the launch of the national mission in 2023 was large-scale screening, and it is a matter of satisfaction that the target has been achieved ahead of schedule. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said that Prime Minister Narendra Modi expanded the network of software technology parks of India to Tier 2 and Tier 3 cities to accelerate the growth of the IT sector across the country. Speaking during a visit to STPI Patna in Patna, the minister said that discussions were held on the development of the state's IT ecosystem through cooperation between the central and state governments.

0: 우디하고 소니온다.
1: 강식 삼대 자르삼바 델레 신도 미삼데냐나 일레 신나삼노 통주문도 미조지 데르데 바이 삼바이 데니르시도 바치 나라지 옷 야가 아니옵니다. 다 나라지 이나 샤제 야가 샤피주 그 삼노 통수구이나 샤피주 신나다야 옷차로 슈지 이나 내고르가 가라 아니옵니다. 감옥 담바야메 되줌니 데니르시도 바치하스 대단네네 군레제 신도 니거 미주로스 시시마에 연유서 대단네는 패미주 대단네네 군레제냐나 उतने चलन रंश नका ने ओ दो दोइन थी जे नाया जिक शर्मा जी शुभ या कोइन गंग रंश या कोचे पू दबो नंबर दबो दे रे जुम न्यो उतमो तो माया कोइन शाजे तबा मनो थे ने कोरचे तबा मनो थे ओरेला लगा गंग पो शा हलम हलम हलम दे या गंग बु थु संग थी रंग मनो उतमो तो कोरे जुम न्यो शीशी माई न्यो मोस देदा ने ने फे मिरो ता थी थी या कोइन लगा थी शा सम नंबर दबो दे तो या कोइन इजि शेशिन याते शेशिन गिन्यम शेशिन से रंशे लारो याया सिमने न्यम समनो न मोय या केवजे नंबर तो पे दे यम निगमदा जेमे तन ने नसो दास मोसर तेमो न मंगबो कुला जुबर जुबना तेला छबा पावर छास्ता त नमे न्यागोजे नमे मो जो थपशे से यावसो ओरेला पेना गोम मेडिटेशन दे यागोइना त नमे न्यना सिम जे खेशिने दा Pizza rang, legation matic, legation matic rank is you may order. Udmoderasuina, Nada Changer, Naminia was a mono de Chogos Unionda. The Naminia was a dujun or Mangutis, Junjana Suina, Danglea, Danglean, Ransi, Sim Shinuya, Namin Choga Torques or Modoimne, Penada Ozoneme, Jemutamnina Chitaki, Dishnogorina, Movimur. Tanpa di Yorela, desno kita tanpa di jual mobile dengan TV dengan Netflix ni kalau cik kita sisi tuju rancah tuju halam je noce short yang terlalu tuju dari ni memerlukan pernah desno kalau IPL match ni kena, sinju mana ni sports ke addiction ni semua tu semua ini tinju je di, kerja sih nampu susu beli yang ada bisa begosu, Yorela.

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आइए पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए ग्यांगोंग मठ के आनी केजांग और साथियों से एक बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ख्रिमितंग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी पेमा लामू से एक हिंदी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण में आनंद लीजिए। गैंगस्टर मनोरामा, बॉम्बे टू बैंकॉक, दम मारो दम, लंदन ड्रीम्स और आशाएं फिल्म से गायक जुबिन गर्ग द्वारा गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमे आज शाम 7:11 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए मैरी कॉम फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज़ एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब आपको कल यानी 20 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए नरेंद्र चंचल और साथियों से चंद शिव भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आका सामुदायिक नगमों का आनंद लीजिए माली मियाली सिदिसो और साथी कलाकारों के आवाजों में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 3रे सत्र की छात्रिका कुमारी पेमा लामू से पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान, एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसूजा और

सुजेन डी मेलो, पुष्पा द राइज फिल्म से जावेद अली और मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से मोहम्मद फैज के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए शेरशाह फिल्म से जुबिन नौतियाल और अजीज कौर, कबीर सिंह फिल्म से सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर, बजरंगी भाईजान फिल्म से जुबिन नौतियाल, गुडबाय फिल्म से अमित त्रिवेदी, क्वीन फिल्म से अरिजीत सिंह और अमित त्रिवेदी, पेड्डी फिल्म से मोहित चौहान, दो पति फिल्म से परंपरा टंडन, श्रीकांत फिल्म से जुबिन नौतियाल और तुलसी कुमार और हसीन दिलरुबा फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में आनंद लीजिए पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित

तुलसी कुमार और हसीन दिलरुबा फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में आनंद लीजिए। पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा वादन कल शाम 4:30 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित। हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मोनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए महामहिम टुल्कू तिंजन ग्युरमे रिम्पोछे जी से आचार्य शांति देव द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन मार्ग पर आधारित श्रृंखला का शेष भाग कल शाम 5:00 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर मोनपा में कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए तिंजिन खेडोप के आवाज में चंद गेल्पो गेल्मो मोनपा लोकगीत। लेरिम सेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम यदुन लेरिम में सुनिए तुप्तिन सिंह शास्त्री और साथी कलाकारों के आवाजों में एक बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर स्वस्थ संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। दोनों ओर गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज शाम 7:32 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए इंडियाज मोस्ट वांटेड फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

미디엄 맵 길러스 여질레는 크리티 미드 제티니 케블리치니스카 현재 나셜 우슬림 투 룬팅카 타왕 시든불

0: Kristono lamche bakshi den sana dombor langena udyap ka deshi lungchen ka tawang kuman bakle ni bana cha cha ditur agash bane tawang langje zaman dab dik chuse ni songdor dangro shuk bulirim agash bane deliger le shuso nana hindi ke se juning shuk inji ke se ju sana sa
1: namaskar akashvani samachar ke sath main karishma rai प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम

0: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं अब सुनिए कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितेंग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी पेमा लामू से एक हिंदी कविता। कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती।
1: नमस्कार, मेरा नाम बिमलामू है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है राजकीय माध्यमिक विद्यालय क्रिमितेंग। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ, कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम दो लुराते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस और चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाव से पिए चले, हम बिगमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का पार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। धन्यवाद।
0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितेंग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी पेमा लामू से एक हिंदी कविता।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:12 हुए हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम दर्पण में आज आप आनंद लेंगे गायक जुबिन गर्ग द्वारा गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमे। तो चलिए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं गैंगस्टर फिल्म से जुबिन गर्ग की आवाज में। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत गायक जुबिन गर्ग द्वारा गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला नगमा सुनते हैं फिल्म दम मारो दम से। जयदीप सैनी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

लंदन ड्रीम्स फिल्म से अभी आप सुन रहे थे प्रस्तून जोशी का लिखा नगमा, स्वर जुबिन गर्ग के और संगीत शंकर एजान लॉय का। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए बॉम्बे टू बैंकॉक फिल्म से जुबिन गर्ग के आवाज में, बोल मीर अली हुसैन के तथा संगीतकार रोनी शिरीष।

श्रोताओं, दर्पण कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है आशाएं फिल्म से जुबिन गर्ग के आवाज में, बोल मीर अली हुसैन के और संगीत सलीम सुलेमान का।

आशाएं फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दादू याजो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को अनगिनत मौके देकर उन्हें सशक्त बनाना विकसित भारत का मुख्य लक्ष्य है। युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया का लिखा हुआ एक लेख शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर

0: कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने और बदलाव लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप में से शामिल होने में भी मदद करेगी। अपने लेख में केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि 2013 में फ्रेजाइल 5 में गिने जाने के बाद से भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उसने दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बनाया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बना है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने आज लोकभवन ईटानगर में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की। प्रधान लेखाकार वनलाल चुवांगा ने राज्य की राजकोषीय स्थिति, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन प्रावधानों के अनुपालन, समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और अनुपालन रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की स्थिति पर एक विस्तृत पावर प्वाइंट ब्रीफिंग प्रस्तुत की। राज्यपाल ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा बैठक करते हुए वित्त प्रबंधन और परियोजना कार्यान्वयन में बार बार आ रही कमियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाया कि राज्य का सीमित कामकाजी मौसम कार्यान्वयन में देरी के साथ अक्सर मार्च के अंतिम महीने के दौरान धन का उपयोग करने में जल्दबाजी होती है, जिससे दक्षता और परिणाम प्रभावित होते हैं। सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बजट आवंटन से पहले अच्छी वित्तीय योजना शुरू होनी चाहिए। राज्यपाल ने पारदर्शिता, जवाबदेही और राज्य के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अधिक कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी के जरिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने के महत्व को भी रेखांकित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत व्यापक उपायों को तुरंत और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है। आयोग ने कहा कि इस एडवाइजरी में राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा तुरंत कार्रवाई के लिए 18 उपाय सुझाए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि ये एडवाइजरी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजी गई है। जमीनी स्तर पर इसे लागू करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने देशभर के सभी जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भी यह एडवाइजरी भेजी है। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क में अत्याधुनिक डू इट योरसेल्फ लैब का उद्घाटन किया और APIIP में आयोजित स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पिचिंग सत्र में भाग लिया। नवस्थापित DIY लैब, 3D प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य गुणवत्ता परीक्षण उपकरण और एक समर्पित ब्रांडिंग क्षेत्र सहित उन्नत उत्पाद प्रोटोटाइप सुविधाओं से सुसज्जित है। इस सुविधा को बड़े पैमाने पर विनिर्माण में प्रवेश करने से पहले स्टार्टअप को प्रयोग करने, प्रोटोटाइप विकसित करने और अपने उत्पादों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार की तैयारी में वृद्धि होगी। IAS सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज डॉ सोनल स्वरूप ने आज ईटानगर में ARSRLM स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट कॉन्फ्रेंस हॉल में लखपति दीदी पहल पर राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ सोना स्वरूप ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यभर में पहचानी गई संभावित लखपति दीदियों को सभी संबंधित राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने SHG सदस्यों के लिए आजीविका के मौकों को बढ़ाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए अलग अलग विभागों के बीच तालमेल को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। लखपति दीदी भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका मकसद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाओं को सालाना ₹1,00,000 या उससे ज्यादा की टिकाऊ घरेलू आय हासिल करने में सक्षम बनाना है। यह पहल ग्रामीण परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आजीविका के अलग अलग मौकों को बढ़ावा देने, उद्यमिता विकास कौशल बनाने और वित्तीय समावेशन और विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाने पर ध्यान केंद्रित है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक रिव्यूड द स्टेट फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 एट लोकभवन ईटानगर टुडे। Principal Accountant General Vanlal Chaunga presented a detailed PowerPoint briefing on the state's fiscal position, compliance with the fiscal responsibility and budget

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है शारो तवांग से ड्रमा लामू, पेमा लामू, कोंचो लामू, सांग निमा और तुतन निमा ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है मैंने प्यार किया फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है सेरजोंग मुक्तो से थ्रिंग दोर्जी, नीमांग उरुप और युगे थ्रिंग से नीलकमल फिल्म का नगमा। इस नगमे को लिखा है साहिल लुधियानवी ने, गाया मोहम्मद रफी ने और संगीत दिया है रवि ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। पैगांग लो से पेमा टाशी, तंजिन दावा और लोपसांग के फरमाइश पे सुनिए बेटी बेटे फिल्म से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी का गाया गीत, बोल हजरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

अगला नगमा सुनिए दादा बाबू रूट गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मीफरा नवाज और बेबी चाहत के फरमाइश पर गंगा जमुना सरस्वती फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। अनुमलिक द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है इंदिवार ने।

कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है वेस्ट सिंहभूम चायबासा झारखंड से शिवा गोप प्रेम गोप कपिल गोप शिवांश गोप लिपि गोप और दीपाली गोप ने। आप सभी की फरमाइश पे पेश है चलती का नाम गारी फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है SD बर्मन ने।

तेरी गजरी में लागा जोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गजरी में लागा जोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। फीफा विश्व कप में सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। नौवें दिन अमेरिका का सामना ऑस्ट्रेलिया से और ब्राजील की टीम हैती के साथ खेलेगी। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। ग्वांगडोंग में मेजबान चीन ए के हाथों हार के बाद विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक मिला। FIH नेशंस कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चिली से होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मैच

0: चेन्नई में और नीरज चोपड़ा आज से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फुटबॉल के साथ। फीफा विश्व कप के नवे दिन चार मैच खेले जाएंगे। ग्रुप डी में मेजबान अमेरिका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड और मोरक्को की टीमें आमने सामने होंगी। तीसरा मैच ब्राजील और हैती के बीच खेला जाएगा। चौथा मुकाबला तुर्की और पैराग्वे के बीच होगा। इससे पहले आठवें दिन भी बेहद दिलचस्प मुकाबले खेले गए। कतर को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपना मैच ड्रॉ खेलकर एक अंक हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: हर पल धड़कने बढ़ाने और विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के रोमांच को आगे बढ़ाते विश्व कप के एक से बढ़कर एक मुकाबलों के बीच कनाडा ने वैंकूवर में अपने समर्थकों की तरफ से मिलते प्रोत्साहन के साथ कतर को एक तरफा अंदाज में 6-0 से करारी शिकस्त देकर विश्व कप फुटबॉल के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत से उसने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। जोनाथन डेविड ने अपनी टीम के लिए हैट्रिक लगाई। वे इस विश्व कप में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बाद एक मैच में 3 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कतर के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिले, जिससे उसकी टीम 9 खिलाड़ियों तक से मिट गई। कनाडा की टीम ने इसका पूरा फायदा उठाया और ताबड़तोड़ हमले कर एशियाई दिग्गज टीम कतर को पूरे मैच के दौरान संभलने का मौका ही नहीं दिया। हाफ टाइम तक कनाडा 3-0 से आगे था। इस मैच में मेजबान टीम को गोल के रूप में एक तोहफा भी मिला, जब 75वें मिनट में मोहम्मद मनाई ने अपने गोलकीपर को चकमा देते हुए आत्मघाती गोल कर दिया। उधर ग्वाडालाजारा में लुइस रोमो ने दक्षिण कोरिया की रक्षात्मक चूक का फायदा उठाते हुए गोल किया, जिससे सह मेजबान मेक्सिको 1-0 से जीत हासिल करके मौजूदा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मैच जब गोल रहित बराबरी पर चल रहा था, तब खेल के 58वें मिनट में दक्षिण कोरिया के गोलकीपर किम स्योंग ग्यू और डिफेंडर ली ग्यू ह्यू के बीच टक्कर होने से गेंद पेनल्टी एरिया के अंदर छूट गई। रोमो के पास ये सुनहरा मौका था और उन्होंने गेंद को आसानी से खाली नेट में डालकर गोल कर दिया, जो बाद में निर्णायक साबित हुआ। ये उस टीम के लिए एक बड़ी जीत है, जो 2022 में ग्रुप चरण में जीत हासिल करने में नाकाम रही थी। मेक्सिको के खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न मनाया। उधर एटलांटा में टेबोहो मुकेना ने आखिरी क्षणों में पेनल्टी को गोल में बदलकर न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया, बल्कि चेक गणराज्य के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ कराकर विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप ए में उसे एक महत्वपूर्ण अंक भी दिलाया। मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में 6वें मिनट में मिखाल सादिलेक ने चेक गणराज्य को बढ़त दिलाई। चेक गणराज्य जब जीत की तरफ बढ़ रहा था, तब थापेलो मासेका का लंबी दूरी का शॉट पेनल्टी एरिया में चेक प्रतिद्वंद्वी पावेल सुल्क के हाथ को स्पर्श कर गया। मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान आंसू बहाते हुए दिखाई देने वाले मुकेना ने 83वें मिनट में पेनल्टी स्पॉट पर कदम रखा और चेक गणराज्य के गोलकीपर मातेज कोवर के पास शॉट मारकर गोल कर दिया। इस ड्रॉ से दक्षिण अफ्रीका के भी अगले दौर में पहुंचने की संभावना बन गई है। चौथे मैच में इंग्लवुड में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी योहान मंजाबी के 2 गोल की मदद से स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी के मैच में बोस्निया हर्जेगोविना पर 4-1 से शानदार जीत हासिल की। मंजाबी ने मैदान पर उतरने के 3 मिनट बाद ही मैच के 74वें मिनट में एक शानदार वॉली शॉट लगाकर विश्व कप में अपना पहला गोल किया। बोस्निया के टेरिक मुहारे मोविच को खतरनाक टैकल के लिए लाल कार्ड दिखाए जाने के कारण उसकी टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। अपना दूसरा विश्व कप खेल रही इस टीम के पास अब भी नॉकआउट चरण में पहुंचने का मौका है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये थी फुटबॉल की बात और अब चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को मात दी, वहीं अनमोल खरब हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: असम की 26 वर्षीय खिलाड़ी अश्मिता ने विश्व की 99वें नंबर की खिलाड़ी किम को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 21-18 से हराया। पहले गेम में अश्मिता और किम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और एक समय तक स्कोर 14-14 से बराबरी पर था। इसके बाद अश्मिता ने

0: का परिचय देते हुए लगातार 4 अंक हासिल किए और गेम अपने नाम कर लिया। पहले गेम की गलती से सीख लेकर किम ने दूसरे गेम में बेहतरीन शुरुआत की, वहीं अश्मिता दूसरे गेम की शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई। अश्मिता एक समय पर 2-8 से पीछे थी, हालांकि अश्मिता ने शानदार वापसी करते हुए अंतर 16-18 तक कर दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 अंक जीत कर अंतिम 4 में अपनी जगह सुनिश्चित की। इस साल BWF टूर प्रतियोगिता में ये उनका पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। अश्मिता चोटिल होने के कारण 3 महीने तक खेल से बाहर रही थी और उन्होंने मई में वापसी की थी। वापसी के बाद उन्होंने चाइना मास्टर सुपर 100 और मलेशिया मास्टर सुपर 500 प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। अश्मिता कल फाइनल में जगह बनाने के लिए कोरिया की पार्क गा यून का सामना करेंगी। दूसरी ओर अनमोल खरब प्रतियोगिता से बाहर हो गई। विश्व रैंकिंग में 51वें स्थान पर काबिज अनमोल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रही और 1 घंटे तक चले मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 36वें स्थान की खिलाड़ी और चौथी वरीयता प्राप्त हान कियानशी से 21-14, 15-21, 13-21 से हार गई। अनमोल के बाहर होते ही प्रतियोगिता में भारत की एकमात्र उम्मीद अश्मिता ही बची हैं। अब भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की निगाहें कल होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में अश्मिता पर होंगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
1: चीन के ग्वांगडोंग में आज भारत को विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में मेजबान चीन ए के हाथों 2-3 से मिली हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मुकाबला 2-2 से बराबरी पर था और भारत के आदित्य मेहता निर्णायक फ्रेम में ली चंगजी के खिलाफ लड़खड़ा गए और खिताब के लिए हुए इस निर्णायक मुकाबले में पिछड़ गए। भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने चंगजी के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। मेहता इसके बाद जू जियारुई से 34-66 से हार गए। डबल्स मुकाबले में आडवाणी और मेहता की भारतीय जोड़ी जियारुई और पैन यिमिंग से हार गई। आडवाणी ने एक बार फिर अपने सटीक खेल से भारत की वापसी कराई। 11 बार के राष्ट्रीय चैंपियन ने जियारुई के खिलाफ 82-4 की शानदार जीत हासिल की, लेकिन निर्णायक फ्रेम में मेहता अपनी लय नहीं ढूंढ पाए और भारत को जीत नहीं दिला सके। अब चलते हैं हॉकी के मैदान पर। FIH नेशंस कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का मुकाबला चिली से होगा। भारतीय टीम को इस मैच को जीतने का बेहद मजबूत दावेदार माना जा रहा है।
2: टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय महिला हॉकी टीम निचली रैंकिंग वाली चिली के खिलाफ अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी ताकि FIH प्रो लीग में वापसी की ओर अगला कदम रख सके। भारत ने पूल ए में 3 मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम को अगले सत्र में प्रो लीग में वापसी के लिए नेशंस कप जीतना ही होगा। भारतीय टीम पिछले सत्र में 16 मैचों में सिर्फ 10 अंक लेने के बाद प्रो लीग में सबसे नीचे रहा और नेशंस कप में खिसक गया था। 8 देशों के FIH नेशंस कप के विजेता को अगले सत्र में प्रो लीग में जगह मिलेगी। मौजूदा रैंकिंग और फॉर्म को देखते हुए भारत का पलड़ा चिली पर भारी है। विश्व रैंकिंग में भारत 9वें और चिली 13वें स्थान पर है। सेमीफाइनल से पहले मुख्य कोच शोर्ड मारिन को कुछ पहलुओं पर काम करना होगा। 17वीं रैंकिंग वाली उरुग्वे को हराने के लिए भारत को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ड्रैग फ्लिकर दीपिका शानदार फॉर्म में है और 4 गोल कर चुकी हैं। नवनीत कौर, कप्तान सलीमा टेटे और लालरेम सियामी भी 1-1 गोल कर चुकी हैं। भारत के लिए एकमात्र फील्ड गोल दीपिका सोरेंग ने किया है। भारत को अगले मैचों में और फील्ड गोल करने होंगे। इसके लिए फॉरवर्ड पंक्ति को मौके बनाकर फिनिशिंग तक ले जाना होगा। अगर भारत अपने पिछले प्रदर्शन को जारी रखने में सफल रहता है तो खिताब की तरफ कदम बढ़ाने से उसे रोकना विरोधी टीम के लिए काफी मुश्किल होगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: फुटबॉल हॉकी की बात हमने कर ली और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। तीसरे मुकाबले से पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है और भारत इस मैच में भी जीत का प्रबल दावेदार है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी भारतीय टीम का इरादा तीसरे मैच को जीतकर क्लीन स्वीप का होगा। टीम की निगाह KL राहुल और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर रहेगी। राहुल की वनडे टीम में जगह को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन जायसवाल शीर्ष क्रम में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। उधर किशन ने लखनऊ में शतक लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ऐसे में इस सीरीज के हर मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की पैनी निगाह रहेगी। BCCI ने सेंटर ऑफ ऑफ एक्सीलेंस।

0: रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद इस मैच के लिए हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। यह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह ले सकते हैं, जिन्होंने इस श्रृंखला में अभी तक दोनों मैच खेले हैं। इससे भारत को चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की अनुपस्थिति में निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज का विकल्प भी मिलेगा। इससे टीम प्रबंधन को ब्रिटेन के दौरे से पहले उनकी फॉर्म और फिटनेस का आकलन करने का मौका मिलेगा। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, तो उसने इस श्रृंखला में एकमात्र टेस्ट मैच और पहले दो वनडे में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है। उसकी टीम हालांकि जीत के साथ श्रृंखला का समापन करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इसके लिए उसे खेल के तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: क्रिकेट की एक और खबर, दांबुला में वनडे फॉर्मेट की त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका ए का सामना भारत ए से होगा। आज अफगानिस्तान ए आखिरी लीग मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ 103 रन के बड़े अंतर से हार गया। इस वजह से भारतीय टीम की फाइनल में जगह सुनिश्चित हो गई। और अब बात एथलेटिक्स की। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये नीरज का इस एथलेटिक्स सत्र में पहला मुकाबला है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज रात दोहा में डायमंड लीग में जज्बे और जुनून के साथ प्रतियोगिता का आगाज करेंगे। इस स्टार खिलाड़ी ने 2023 में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के साथ खिताब अपने नाम किया था। वहीं 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरा स्थान भी हासिल किया। पिछले वर्ष नीरज ने इसी मैदान पर 90 मीटर का आंकड़ा भी पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उन्हें 90.23 की दूरी प्राप्त करने के बाद भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा कुछ समय से चोट के कारण मैदान से बाहर थे। नीरज हाल ही में स्विट्जरलैंड में ऑफ सीजन प्रशिक्षण शिविर में पीठ की चोट से उबर रहे थे। भारत का ये करिश्माई खिलाड़ी आखिरी बार पिछले वर्ष सितंबर में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मैदान पर उतरा था। ऐसे में लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए मैदान पर कड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। नीरज ने कहा, इस प्रतियोगिता के लिए स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और पूरी तरह से फिट हैं।
3: दिस इज माय फर्स्ट कंपटीशन फॉर द सीजन, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई फील रियली गुड, आई फील फिट।
2: नीरज को श्रीलंका के खिलाड़ी सहित अन्य खिलाड़ियों से कड़ी चुनौती मिलेगी। वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक श्रीलंका के रुमेश पथिरागे का भी हालिया प्रदर्शन शानदार रहा। पथिरागे ने इस महीने की शुरुआत में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा विश्व चैंपियन केशॉन वॉलकॉट, ग्रेनेडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और केनिया के जूलियस योगो भी शामिल हैं। ऐसे में आज सभी प्रशंसकों की निगाहें वापसी कर रहे नीरज और एक रोमांचक मुकाबले पर होंगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और एक अच्छी खबर, चीन के गुइयांग में विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हो गई है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ

0: ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रूपये से

0: अधिकता हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1000 करोड़ था, इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: As our foreign policy,
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
2: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
5: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
4: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
6: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें

0: redcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country.
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow.